जी जी सुनाओ। आवाज आवाज थोड़ी रेडियो आवाज थोड़ी बिल्कुल फिर खराब हो रही है, थोड़ा जा प्रॉब्लम आ रही है आवाज चाच। हूं ठीक है, माइक ना लाओ फिर माइक। सर तुसी सुना रहे थे कोई सरसा तो कैरकम। वाह सर्दी पवन सुखावे जी वाह। वाह जी वाह दादी संग चल रहे वह किन्नी कना हुई रात। हां जी जी वाह जी वाह। वाह वाह जी वाह दादी संग चल रहे वह किन्नी कना हुई रात। हां जी जी वाह जी

अच्छा कोटला निहंग सिंह कोई इस तरह का नाम है। अच्छा हां जी हां जी बड़ी हैरानी की गल है भाई सांभ के रखिया कुछ वे लो चमकौर की गढ़ी नजर नहीं आती ठंडा बुरज नजर नहीं आता ਉਹ ਕੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा बिल्कुल एक विलक्षण जंग हुई जिहड़ी दुनिया के इतिहास विच इहो जी होर किते नहीं हुई Hmm.

जी जीवत कहिए यार, वाह जी वाह। बाकी भी तो, हाँ बाकी भी तो मेरे ही पुत्र ने। ते ए बाकी भी मेरे ही पुत्र ने, इहदे ते एक शेर है जी के पुत्र वार के सिंघां नूं पोते आखी, अनोखी जग विच दाता तू रीत पाई, तेरी भगती ने भगतां दे कपाट खोले, ओए तेरी तलवार ने जुल्म दी झंड लाई, तेरी कलम ने जेड़ी लकीर खिची, वेख विद्वाना ने मुंह विच कलम पाई, तेरी ललकार ने जुल्म दे साह डके, ते तेरी वंगार ने मुर्दियां च जान पाई, सारे बाज बागा चो कूच कर गए जदों चिड़िया दे हाथ तलवार आई, सरबंस दानियां तेरिया तू जाने, तू साडियां नेरियां रातां दा चन्न माही, सरबंस दानियां तेरिया तू जाने, तू साडियां नेरियां रातां दा चन्न माही। आ सुच्चा सिंह नूं कहण सरदार लोकी, ऐसी दाते ने कौम ते मोर लाई, भाई ऐसी दाते ने कौम ते मोर लाई। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तो, तुसी सुन रहे हो जी प्रभात रेडियो फ्रैंकफर्ट, ते मेरे नाल ने जी साडे बड़े उंदा पत्रकार बलबीर बब्बी जी। हां जी बब्बी, जी हाँ जी जय कृष्ण।

0: हाँ जी
1: बोलो। हाँ शरद कोई नहीं मैं आ जाएगा मैसेज जो आवाज आने चलेगी तो मैं गया इधर ट्राई कर बोली जाओ।

0: ठीक है जी ठीक है। फिर मैं और
1: चलो
0: चलो थैंक यू वेरी मच मेहरबानी सत श्री अकाल।

हाल अब क्या होगा ये हाल क्या बताऊं जो हाल हुआ मेरा अल्लाह अल्लाह ले गया छल्ला अल्लाह अल्लाह ले गया छल्ला अल्लाह अल्लाह अल्लाह वो ले गया चांदी छल्ला अल्लाह अल्लाह अल्लाह वो ले गया चांदी छल्ला मैं भी उसका दिल ले लूंगी कल को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह

जितने भी चीजों का मैंने नाम लिया है, चाहे मैंने एओर्टा कहा, चाहे मैंने लैरिंग्स कहा, चाहे मैंने फूड पाइप ईसोफेगस का नाम लिया या हार्ट का नाम लिया, ये सभी के सभी अंग अपना अपने गिलाफ में लपेटे हुए हैं। मतलब ये है कि इनकी एक बाउंड्री निश्चित है कि भाई तू इधर से इधर नहीं जाना, तू इधर से इधर नहीं जाना। लेकिन ये इधर से इधर नहीं जाना कुछ अंगों के ऊपर लागू होता है, लेकिन जो ईसोफेगस है उसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। वो बेचारा ऐसा है, फ्लेक्सिबल है कि तुम क्या यार, तुम सदा तो गुजरते नहीं हो, कभी कभी गुजरते हो ना, सुबह में, दोपहर में या शाम में, ब्रेकफास्ट लंच या डिनर यही होता है ना तुम्हारा काम। तो तुम भाई थोड़ा बहुत हमें रास्ता और ज्यादा दे दो तो कोई बात नहीं। तो इसको ये बाकी और जितने भी अंग हैं, जैसे एओर्टा है, जैसे वेना केवा है, इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा है, या हार्ट की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई या फेफड़ों की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो ये इससे रास्ता ले लेते हैं। तो फिर इसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस आ जाती है, ऐसी घुटन आ जाती है कि तुम थोड़ा हटो यार पास से, वो उसके पास से अलग हटने से थोड़ा बहुत इसमें टेढ़ापन आ जाता है और डाइवर्शंस हो जाता है। तो इस तरह के डाइवर्शन जो है, चार जगह हमने नोट किए थे कि इसमें चार जगह के डाइवर्शंस हैं, और जहां से ब्रोंकस इससे अलग होती है, उसके बाद जहां से वेना केवास आती है, जहां से एओर्टा पास करती है, और कुछ पोर्शन हार्ट का भी है। तो इस तरह ये चार मेन जो इम्पोर्टेंट डाइवर्शंस है, जहां पर ईसोफेगस को कहा जाता है कि यार थोड़ा सा रास्ता दो मुझे, है। तो इस हिसाब से जो ये छाती के अंदर का जो सेंट्रल पोर्शन था, जिसको मीडियास्टाइनम हमने कहा था, ये मीडियास्टाइनम वाला पोर्शन जो है, इसमें इतने इम्पोर्टेंट अंग हैं, लेकिन कॉमन पाथवे है। उसके बाद हमने ये आपको बताया था हार्ट के बारे में, और हार्ट के मसल्स कैसे हैं, हार्ट के चैम्बर कितने हैं, हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट का सर्कुलेशन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे इसमें सर्कुलेशन चलन होता है, इसके जो वाल्व्स हैं उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है, ये सब चीजें मैंने आप सब लोगों को बहुत आसान लैंग्वेज में बता दी, बहुत से प्रोग्रामों में बता दी कि हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, तीनों लैंग्वेज में मैंने ये चीज एक एक प्रोग्राम में बता दिया कि हार्ट, क्योंकि हार्ट को मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, है भी इम्पोर्टेंट ऐसा ऑर्गन है ना, तो इसलिए जितना भी हो सका मैंने इसके लिए आपको डिटेल बार बार दोहरा दी। फिर भी अगर किसी सज्जन मित्र को ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे तो और जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो वो अलग से फोन करके पूछ सकता है 4086871899। किसी भी वक्त जितनी जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, किसी भी सिस्टम में, चाहे ब्रेन की बोलूं, चाहे गले के बारे में बोलूं, चाहे छाती के बारे में बोलूं, या एब्डोमेन के बारे में बोलूं, किसी भी वक्त किसी को आपको कोई प्रॉब्लम है, या उसके बारे में कोई शंका है, या आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि और जानकारी मिले, तो आप किसी भी वक्त मेरे से फोन पे बात करके और उसका हल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ये सब चीजें जितनी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे ब्रेन में सेट की हुई है, इनके लिए मुझे किताबें खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। हाँ, विषय जो मैंने करना है वो ठीक मुझे देखना पड़ता है कि आज मैंने क्या करना है। जैसे हम लोग छाती पर पहुंचे हैं, तो छाती के जो मेन मीडियास्टाइनम को कवर कर लिया, हार्ट को कवर कर लिया, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है यहाँ पर वो चेस्ट है, सॉरी लंग्स है। तो लंग्स के बारे में बात करते हुए आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, हालांकि हमारा जीवन ही हवा है, दम आया तो हम हैं आदमी हैं, दम नहीं आया तो हम डेड बॉडी हैं। तो वो दम को चलाने वाला जो ऑर्गन है उसका नाम है लंग्स। तो शरीर में जो लंग्स है ना, वो दो है, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है, और आम लोग सभी ये तो जानते ही हैं, लेकिन इसकी और बहुत सी बारीकी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के प्रोग्रामों में, कि एक तो इसका कलर पिंक होता है, एक ये सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी टाइप के होते हैं। और ये जो बातें हैं बेशक आम आदमी की जानकारी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग एटॉप्सी करते हैं या जो लोग बायोप्सी करते हैं उनके लिए, जो डॉक्टर लोग जो जिंदा पीस लेकर चेक करते हैं कि उसमें क्या खराबी आ गई है उनके लिए, या एटॉप्सी डेड बॉडी की जब छानबीन करते हैं ये कैसे मरा, क्या हुआ, जो वो होता है उसको एटॉप्सी बोलते हैं, तो वो एटॉप्सी जब करते हैं उनके काम की चीज है कि कैसे मरा, क्या हुआ, इसमें रंगत कैसे चेंज होगी, तो उसके लिए ये जरूरी है कि इसका जाना जाए कि रंग नॉर्मल रंग क्या है। तो नॉर्मल रंग इनका पिंक होता है, स्ट्रक्चर उसका जो स्पंजी होता है, सॉफ्ट होते हैं, और आमतौर पर हमने बार बार कहा कि जब बच्चा मां के पेट में होता है तो ये प्रेस किए रहते हैं, इसमें कोई चीज नहीं होती।

0: थी, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आना शुरू होता है और जो हमारे एनवायरमेंट का जो 480 mm ऑफ मर्करी का प्रेशर उस पर पड़ता है तो एकदम उसकी चीख निकल जाती है ऑटोमेटिक, और उसी चीख की वजह से बाहर की हवा अंदर पहुंच जाती है और बाहर की हवा अंदर पहुंच जाती है और ये फूल जाते हैं। ये फूल जाते हैं, केवल ये ही नहीं फूलते, इनके साथ और बहुत सा स्ट्रक्चर चालू हो जाता है जो पहले बंद था। जैसे मैंने कहा कि सारे शरीर का खून इकट्ठा होकर राइट एट्रियम में हार्ट के ऊपर वाले खाने में आता है और उसके बाद वहां से फिर नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर एक नाली निकलती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं और वो फेफड़ों में लेकर जाती है। इसमें जो वाल्व लगा हुआ है वो बेचारा दरवाजा इस टाइप का है, वैसे तो दरवाजा हो ना, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, लेकिन ये दरवाजा एक ही तरफ खोलता है। जितने भी हार्ट के अंदर सेमीलूनर वाल्व है वो सभी एक ही तरफ खुलते हैं, दूसरी तरफ बंद हो जाते हैं। तो इसमें एक सेमीलूनर वाल्व लगा है जिसकी वजह से ये खून जितना भी राइट वेंट्रिकल में आया वो फेफड़ों में जाना शुरू होता है, तो पंप हुआ फेफड़ों में गया, वापस नहीं आ सकता, उसमें वापस दूसरे पासे से शरीर से जो आ रहा है खून वही आएगा हार्ट में। तो इस तरह का जो चलन इस चीज का है फेफड़ों का, ऐसे इनको खून मिलता है। अब उसकी जो अंदर की डिस्क्रिप्शन है ना वो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। एक तो ये मैंने कहा कि लंग्स दो होते हैं, एक को राइट लंग बोलते हैं एक को लेफ्ट लंग बोलते हैं। इनकी जो शेप होती है सुपंजी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये हमने बता दिया आपको। इसकी जो शेप अगर देखें बाहर से तो बाहर से जो शेप इसकी जैसे पिरामिड है ना, पिरामिड के बारे में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जानते हैं जी, पिरामिड की तरह ऊपर को चोटी है, बीच को जो चौड़ाई है बढ़ती जाती है, नीचे बेस आ जाता है। लेकिन बेस की एक इसकी और खासियत है, बेस इसका डोम शेप है, ऐसे ना कि बेस ऐसे नहीं कि लाइन सीधी आ गई, ऐसा नहीं है, ऊपर त्रिकोण है, कोण बना हुआ टॉप में जो वहां पर हमारी हसली की हड्डी है उसके नीचे आता है, और नीचे जैसे जैसे आता है ये थोड़ी इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, और जैसे नीचे इसका बेस आता है तो बेस के अंदर गुंबद की तरह है, जैसे मंदिर में या गुरुद्वारों में गुंबद ऊपर बने होते हैं ना तो अंदर से खाली होते हैं, तो इसी तरह जो अंदर का जो बेस है नीचे का वो गुंबद की तरह है। और ये क्यों है, इसलिए कि राइट साइड में फिर पसलियों के नीचे ही, क्योंकि इसका एरिया तो पसली के अंदर अंदर है ना, अपनी जो रिब्स है उनके अंदर अंदर है, और उसके राइट साइड में हमारा लिवर होता है, बहुत ज्यादा पोर्शन लिवर का जो राइट साइड में होता है, हालांकि कुछ जो है लेफ्ट लोब जो है वो बाई तरफ भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, और बाई तरफ स्प्लीन होती है, तिली जिसको हम बोलते हैं वो होती है। तो इसलिए अंदर से बेस जो इसका है फेफड़ों का वो डोम शेप इसी तरह का बना हुआ है। दूसरा इसकी शक्ल में एक अंतर है कि जो राइट लंग है ना वो हाइट में कम है। हाइट में कम क्यों है, क्योंकि लिवर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो नीचे है, कवर कर लेता है पसलियों को, और वो बहुत बड़ा पोर्शन नीचे पसलियों का जो कवर कर देता है तो फिर भाई इसके लिए स्पेस ऊपर कम बच जाती, लेकिन ऊपर वाली स्पेस बेशक थोड़ी बचती है लेकिन उसके भी तीन पोर्शन है, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, तीन लोब। लोब का मतलब है हिस्से, और अलग अलग हिस्से, एक हिस्से का दूसरे हिस्से से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं, डायरेक्ट उनका कोई लेना देना नहीं। अगर वो जो संबंध है अंदर ब्रोंकस से ही है वो मैं बता रहा हूं अभी आपको, सो डायरेक्ट इनका कोई संबंध नहीं होता। और जो हमारा बायां लंग है, बायां फेफड़ा है तो उसकी भी अजीब रचना कि वो होता तो थिन है, पतला होता है, लंबाई में राइट लंग से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि स्प्लीन बहुत छोटी है, थोड़ा कवर करती है पसलियों का, और ऊपर से लेकर हमारी क्लेविकल की हड्डी से लेकर नीचे तक जाते जाते काफी राइट लंग से लंबा हो जाता है। लेकिन इसमें एक और है, मीडियल साइड, मीडियल साइड हम उस चीज को बोलते हैं जो किसी के सेंटर के नजदीक होती है, और इसका दूसरा नाम ये होता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। जो दूर होता है उसको हम डिस्टल बोलते हैं। मैं और आसानी से समझा दूं आपको, अगर हमने हाथ का बात करने हो तो हाथ बॉडी से डिस्टल पोर्शन है, दूर का हिस्सा है। शोल्डर है ये हमारा मीडियल पोर्शन है, मिडल का पोर्शन है, इसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। तो फेफड़ों की बात अंदर आ गई तो फेफड़ों का जो पसली जो हमारी स्टर्नम है सामने छाती की हड्डी है जो इसके नजदीक है उसको हम इसको मीडियल पोर्शन बोलेंगे या प्रॉक्सिमल हिस्सा बोलेंगे, ठीक है। और जो दूर का बाहर का पसलियों के साथ लगा हुआ इनका हिस्सा है बाहर का उसको हम डिस्टल पोर्शन बोलेंगे। तो ठीक है, ये राइट साइड में जो मीडियल पोर्शन है लेफ्ट लंग्स का जो मीडियल पोर्शन है वो अंदर से खुरचा हुआ है ऐसे जैसे किसी को बीच में काट दिया हो। वो काटने का मतलब ये है कि उस हिस्से में हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट ने बहुत सारा हिस्सा फेफड़ों का ले लिया है, वो बाई तरफ ले लिया है। इसलिए मैंने ये कहा था कि जब हार्ट की बात मैंने करी थी तो मैंने ये कहा था कि हार्ट की जो बाउंड्री है बेशक ज्यादा बाई तरफ है, हमारी हार्ट में ब्रेस्ट की जो निप्पल होती है ना इससे सीधे 3.5 इंच अगर हम नीचे आते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल की आखिरी बाउंड्री के तेरी हद यहां पर है भाई, वहां तक हार्ट की बाउंड्री होती है लेफ्ट वेंट्रिकल उसको हम बोलते हैं। और दाहिने साइड में हम बोलते हैं कि दाहिने साइड में तो हार्ट नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन है जैसे हमारी सामने की छाती की जो हड्डी है ना इसको हमने स्टर्नम कहा था, इस स्टर्नम के सेंटर से 1.2 सेंटीमीटर राइट साइड में भी हार्ट को जगह मिलती है जो राइट दाहिने फेफड़े से मिलती है। तो मतलब इस तरह की ये इसकी हार्ट की पोजीशन है जो हम बाहर से भी जान सकते हैं, अगर किसी की छाती को देखते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना बाहर पेंसिल अगर लाइन लगानी हो तो हम लगा सकते हैं कि ये हार्ट की बाउंड्री यहाँ यहाँ पर इसकी है। तो मतलब क्या हुआ कि बाईं तरफ का फेफड़ा वो इसी तरह नीचे से कर्व्ड बना हुआ है, कर्व की तरह है क्योंकि वहां पर हार्ट को एडजस्ट कर दिया गया। तो दूसरी एक अलग बात ये है कि लेफ्ट फेफड़े में 2 लोब होते हैं, राइट में 3, बाएं में 2 लोब होते हैं, और 2 लोब जो होते हैं उनमें भी पोर्शन जो है नीचे वाले लोब का ज्यादा पोर्शन हार्ट ने कवर किया है। एक और बात इसमें अजीब बात है कि ऊपर वाला जो लोब है उस लोब से एक छोटा सा पोर्शन अलग नीचे को आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगुला, लिंगुअल बोलते हैं जीभ को, लिंगुआ जीभ का दूसरा नाम है लैटिन वर्ड है। तो लिंगुआ का मतलब है जीभ, जैसे हमारी जीभ होती है इस तरह का एक छोटा सा पोर्शन लेफ्ट लोब के ऊपर वाले लेफ्ट लंग के ऊपर वाले लोब से आकर हार्ट को और सेपरेट कर देता है फेफड़ों से कि भाई ना ना ना तुम आगे नहीं आना, यहाँ पर ये बाउंड्री है इसकी, और वहां पर भी फेफड़ों का थोड़ा हिस्सा है जिसको हम लिंगुला बोलते हैं। तो ये कुछ लोग बोलते हैं कि भाई है तो इसके भी 3 ही है ना, नहीं 3 नहीं है, लोब 3 नहीं है, क्योंकि लोब की जो डिस्क्रिप्शन में अभी आपको बताने वाला हूं कि जितने भी लोब है ना फेफड़ों में, राइट में हमने 3 बताया, लेफ्ट में हमने 2 बताए और एक ये लिंगुला बताया, इसको लिंगुला को हम लोब नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो दूसरी डिस्क्रिप्शन है ना वो ये पूरी नहीं करता। वो क्या है कि जितने भी ये फेफड़े हैं, या वैसे भी मैंने ये कहा था कि जितने भी अंग हैं शरीर में सभी अंगों को कुदरत ने एक गिलाफ में लपेट कर वहां पर रखा हुआ है ताकि उनको पता रहे कि मेरी आखिरी बाउंड्री ये है। और इसी तरह ही फेफड़ों को भी ऊपर से कवर किया हुआ है और उसका नाम है प्लूरा। प्लूरा एक गिलाफ की तरह है, जैसे गिलाफ रजाई के ऊपर हम चढ़ाते हैं ना तो 2 लेयर होते हैं उसके अंदर हम रजाई को डाल देते हैं, सिरहाने के 2 लोब होते हैं उसके अंदर सिरहाना डाल देते हैं, तो इसी तरह ये इसके 2 लोब होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लूरा। जो हार्ट के ऊपर था उसको पेरिकार्डियम में कहा था हमने और इसको हमने प्लूरा कहा था। ये जो प्लूरा है इसके 2 पर्दे मैंने आपको बताया, एक तो बाहरी पर्दा है जो पसलियों के साथ लगता है, दूसरा पर्दा जो है वो हर एक लोब के अंदर जाता है, यही डिफरेंशिएशन हो गया कि ये तीसरा जो मैं लिंगुला बताया है ये लोब नहीं है क्योंकि इसके अंदर वो मेम्ब्रेन जा नहीं रहा, जो अंदर का मेम्ब्रेन है इस प्यूरा का वो हरेक लोभ के अंदर बाहर जा रहा, उसकी बाउंड्री को फिक्स कर रहा है कि ना भाई तू दूसरे लोभ के साथ अटैच नहीं होगा ना, तेरा अलग बाउंड्री है, उसकी अलग बाउंड्री है, आपका कोई लेना देना नहीं है। तो अंदर का लेयर जो है वो फेफड़ों के अंदर सेपरेशन करता है उनको, लेकिन इस लिंगुअल को तो इस तरह का कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए ये एक सेपरेट सा चीज हो जाती है सिर्फ हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए कि अगर कई प्रॉब्लम हार्ट फेफड़ों को आ जाए तो कम से कम हार्ट उससे भी जरूरी है। खुराक बेशक हमारे घर में पड़ी रहे और हमको खाने नहीं को देगा तो वो कैसे होगा, तो हार्ट को, हार्ट ने तो सारे शरीर को खाने के लिए देना है, इसलिए इसको कोई रुकावट नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो इसलिए वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने एक छोटी सी जीव की तरह का छोटा सा पोर्शन लगा दिया। सो मैं ये कह रहा था कि हर एक फेफड़े के ऊपर कवरिंग किया हुआ है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। बाहर का जो उनका लेयर है वो पसलियों के साथ साथ पूरे को कवर करता है, अंदर का जो लेयर है वो हर एक लोब के अंदर, यहाँ पर लोब का हिस्सा है इसके अंदर कवर करेगा, फिर बाहर आ जाएगा फिर दूसरे लोब को कवर करेगा, ताकि लोब का आपस में कोई कनेक्शन ना रहे। और अगर इनका कोई कनेक्शन है तो वो जो सांस की नली ऊपर से आ रही है जिसकी बात मैं अभी करता हूँ, वो ही कनेक्शन इनका रहेगा, डायरेक्ट इनका आपस में कोई कनेक्शन लोब्स का नहीं रहता। तो तीन लोब राइट साइड में, दो लोब हमने बताए बाएं फेफड़े में, तो इनके अंदर जो अंदर का लेयर है ये अंदर जाता है लोब के अंदर, और फिर क्योंकि तो फेफड़ों को फैलना है, नीचे को भी ऊपर को भी, नीचे को भी ऊपर को भी, बाहर को भी फैलना है, जैसे हवा जाएगी उसी तरह वो फैलेगा, तो फैलने के लिए फ्रिक्शन ना हो, जैसे हम तेल डालते हैं उसमें इसकी मोबिलाइल डालते हैं, तो मोबिलाइल डालने का मतलब होता है कि फ्रिक्शन ना हो या इसका तेल का कोई इंजन को नुकसान ना हो। इसी तरह ही कुदरत ने इसमें एक फ्लूड रखा हुआ है जिसको इंटरस्टीशियल फ्लूड हम बोलते हैं, जिससे लुब्रिकेशन रहती है। जब फेफड़े फौलते हैं हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो इंस्पिरेशन होता है और उससे फेफड़े फैलते हैं और पूरी जितना उनका एरिया है उसको कवर कर लेते हैं, तो वो टच करेगा उसको बाउंड्री को, जो बाहर की बाउंड्री है तो उसको रगड़ ना लगे क्योंकि इसके अंदर का भी लेयर है। तो इसी तरह ही जो फेफड़े खुद इटसेल्फ लोब भी फैलते हैं, तो लोब में भी फैलने से इसकी अपनी कोई फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये अंदर का जो लेयर होता है ये लोब्स के अंदर तक जाता है, फ्लूड हर जगह वो फैला रहता है, फ्रिक्शन ना हो। तो ये मैंने आप सब लोगों को बताया, पहली तो बात लोब की बता दी कि राइट साइड के तीन लोब हैं, बाई तरफ के दो लोब हैं, एक छोटी सी स्लेट है जिसको लिंगुला हमने बोल दिया है, और इनका कवरिंग जो है उसको हमने प्ल्यूरा बोला है, और प्ल्यूरा के दो लेयर होते हैं, दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूड रहता है ताकि अंदर के जितने भी अंग हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग हो, चाहे स्टोमिक हो, चाहे लिवर हो, जितना भी इनको फैलना है, जिनकी बाउंड्री है, बाउंड्री में फैलने के बाद दूसरे अंगों को इसकी कोई तकलीफ ना हो, ये इसकी बाउंड्री। और उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि ये ऊपर की तरफ जो बने हुए पिरामिड की तरफ बने हुए एपेक्स जो है, जब आप अपनी हसली की हड्डी और सामने स्टर्नम की हड्डी को यहाँ पर आप टच करेंगे ना, और इसमें एक गैप है हसली की हड्डी और पहली पसली के बीच में, वहां तक इसकी टॉप जाती है। ये मैं खास तौर पे ऐसे कह रहा हूँ कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, क्योंकि हवा ज्यादातर जाकर अगर कहीं रुकती है, जिसको हम इम्फाइसेमा बीमारी का नाम लेते हैं, वो ज्यादातर ऊपर वाले हिस्से में रुकती है, और इसलिए वो अपेक्स में जैसे हवा जाती तो है, हवा का काम ही है ऊपर को जाना, भारी चीज को नीचे को बैठना है, तो ऊपर जितनी भी गैसेस या वगैरह कुछ होती हैं और वो ऊपर को जाती है, पेक्स तक चली जाती हैं, और लेकिन खुदा ना खास्ता कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ ऐसी सोज हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है वो हवा ऊपर गई यहाँ बिल्कुल टॉप में और यहाँ पर ही आकर रुक गई और फिर वो वापस नहीं आ रही, क्योंकि सोज हो गई फेफड़ों में, सूजन होने की वजह से ऐसा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्फाइसेमा। इस तरह की प्रॉब्लम उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो मैंने डिस्क्रिप्शन के ये आपको ये बताया। उसके बाद हाइलम की बात भी मैंने बता दी कि जो मीडियल पोर्शन है जहां लंग्स को सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन नाक से आ रही है, जहां फेफड़ों को खून सप्लाई करने के लिए उसकी आर्टरी आ रही है, जहां से बाहर जाने के लिए वेन्स जो इसका गार्बेज इकट्ठा करके बाहर लेकर जा रही है वो आ रही है। तो वो जो हाइलम है, जैसे हमारी नाभि होती है, तो नहीं होती है नाभि, तो नाभि की तरह एक ऐसा एरिया होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि राजमा, देखा होगा आपने राजमा का एक अंदर का हिस्सा होता है ना, जैसे वो राजमा की तरह अंदर का हिस्सा बना हुआ है, वो उतने उस एरिए में ही जितने भी ब्लड वेसल्स अंदर जाने वाले हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स बाहर जाने वाले हैं, जितनी भी नर्व्स अंदर जाने वाली हैं, ये सभी के सभी उस इतने छोटे से एरिए के अंदर अंदर पास करते हैं और उसी एरिए में ही उनका आगे आगे पीछे किसी तरह कोई कनेक्शन नहीं है, सारी एंट्री जो है इसमें वहीं से होती है, उसको हमने हाइलम बोल दिया। उसके बाद अब आई इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात। सांस का काम है इसका, ज्यादातर सांस लेना हमें, ऑक्सीजन नाक से अंदर जाती है और नीचे का जो पोर्शन है गले के नीचे है उसका नाम है लैरिंक्स। लैरिंक्स का जो हिस्सा है वो 10-12 सेंटीमीटर के करीब होता है। उसके बाद ये जो हमारा जिसको हम नरगट आम पंजाबी में घरों में बोलते हैं, ये जो कंडी सी है उभरा सा हिस्सा आप देखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, या इसके जो ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम बोल रहे हैं हाई आयड बोन, हड्डी का नाम है हाई आयड बोन, और ये उस स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसको हमने ट्रेकिया बोला था। तो ट्रेकिया इस तरह का स्ट्रक्चर कुदरत ने नेक में बनाकर रखा है कि भाई ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो सिर से नीचे को जा रहे हैं, नीचे से ऊपर सिर को जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, कहीं ऐसा ना हो जैसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते कि भाई इसको पूरा यहां से निकालना है तो पूरी सिक्योरिटी से निकाला जाए, इसको कोई नुकसान ना हो। वो तो वो जो ट्रेकिया है वो हमारी इस तरह की बनी हुई स्प्रिंग टाइप की होती है, उसके बारे में पहले भी प्रोग्रामों में मैंने बताया था कि स्प्रिंग टाइप की होती है और ये कार्टिलेज की होती, हड्डी की नहीं होती। हड्डी बनने से पहले का जो प्रोसेस है मेम्ब्रेन का, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं कि पूरी हड्डी तो बन, जैसे ये नाक है ना, ये हमारा सामने का नाक, हम हाथ लगा रहे हैं, ये नाक कार्टिलेज का बना हुआ, हड्डी का नहीं। और पीछे आप हाथ लगाते हो ना आंख के नजदीक, तो आप देखते हैं ये हार्ड है, ये हड्डी का बना हुआ, कर्बिनेट जिसको बोलते हैं। तो सामने का जो है ये थोड़ा लचकदार है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये जो ट्रेकिया जो बनी हुई है स्प्रिंग टाइप बनी हुई है और ये कार्टिलेज टाइप की इसकी स्ट्रक्चर है कि मूव कर सकती है, आगे पीछे होती रहती है। और ये रखी इसलिए यहाँ कुदरत ने कि इसके नीचे से बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है पास करें, मुख्यमंत्री को गुजरना है तो पूरी सिक्योरिटी कर दो चारों ओर जी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कुदरत ने उसकी बनाई हुई है और इस सिक्योरिटी से जब ये नाली, मैं फिर दोबारा एक दोहरा दूं कि इस जंक्शन का अंदर का जो स्ट्रक्चर है ट्रेकिया के अंदर की, जिसको प्रोटेक्शन ये कर रहा है ट्रेकिया, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का गला तो खराब है या गले में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि वो जा ही नहीं सकती अंदर चीज, तो डॉक्टर लोग यहां पर सुराख करके ना फूड पाइप के कनेक्शन करके पाइप यहां ही डाल देते हैं। तो ये उस चीज का प्रोटेक्शन का हमारे पास इंडिकेशन है कि ये ट्रेकिया है, यहां पर आप सुराख कर सकते हो और फूड पाइप को पहुंच सकते हो या लैरिंग्स को, सांस नली को पहुंच सकते। कई लोगों को देखा होगा जिनको इस तरह की एम्फाइजेमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वहां पर एक विसल सी लगा देते हैं डॉक्टर कि सांस यहीं से आता रहे, नाक की जरूरत ही ना पड़े, आपस इस तरह के आजकल के प्रमाण हुए हैं। तो खैर मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई ये एपिग्लोटिस के एरिया की प्रोटेक्शन करती है ट्रेकिया। एपिग्लोटिस का एरिया एक इस तरह की चीज है, इस तरह का जंक्शन है जहां पर फूड पाइप और सांस की नली ये दोनों आकर मिलती हैं। पहले जो नाक की नाली होती है, नाक से निकलती है और पीछे जाती है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे जा रही है, जब गले में आकर एपिग्लोटिस के एरिया में पहुंचती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है। और फूड पाइप मुंह से शुरू होती है, नीचे फेरिंग्स होगी, और फेरिंग्स जब ये एपिग्लोटिस के एरिया पर यहां पहुंचती है तो ये अपना रास्ता बदल देती है। मतलब फूड पाइप पीछे हो जाती है, सांस वाली नाली आगे हो जाती है, और ये एक जंक्शन बन गया। और इस जंक्शन में कुदरत ने एक ऑटोमेटिक वाल्व लगा दिया। ऑटोमेटिक वाल्व का मतलब ये है कि जब आप सांस ले रहे हो तो उस वक्त उस तरफ का रास्ता खुलेगा, वो वाल्व उधर को जाने देगा उसको। और जब आप खाना खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक सेंस है कि खुराक उधर को जाएगी। कभी कभी हमारी वो नर्व अगर फेल हो जाए, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि लोगों को बार बार चौकिंग होती, पलच जाते हैं लोग, फिर बहुत जबरदस्त खांसी आती है कि कोई खुराक का हिस्सा या कोई चीज जो है वो सांस वाली नली में चली, इवन पानी पीते हुए कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि पानी सांस वाली नली में हो जाता है, लेकिन वहां जा नहीं सकता, तेरा भी रास्ता ये नहीं है। और फिर जैसे अथरू आने वाली बात होती है, चैकिंग होती है, वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है अगर फूड वगैरह हिस्सा कोई चला जाए तो। लेकिन वो ऑटोमेटिक वाल्व यहाँ लगा हुआ है जो इनके रास्ते को तब्दील करता है, गाड़ी का कांटा चेंज करता है, तुम इधर को जाना है तुम इधर को जाओगे, ठीक है। तो यहाँ आकर फेफड़ों की नाली आगे हो जाती है, और ऊपर के इसका नाम था लैरिंग्स, एपिग्लोटिस से निकली तो इसका नाम हो गया ब्रोंकस, और फूड पाइप जो ऊपर से आई थी उसका नाम था फेरिंग्स, नीचे जब इससे निकली जाती ग्लोटस से तो इसका नाम हो गया इसोफेगस। तो इनके नाम भी बदल गए और ये आगे निकलनी शुरू होगी। हम बात फेफड़ों की कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ लैरिंग्स को लेकर ही चलेंगे हम लोग। तो लैरिंग्स जब एपिग्लोटिस से निकली तो इसके नाम बदल गया, ब्रोंकस नाम हो गया इसका। और ब्रोंकस का स्टार्टिंग तो एक है लेकिन आगे दो हिस्सों में बांट गई, दो हिस्सों में बांट गई इस ट्रेकिया के अंदर अंदर ही, प्रोटेक्शन है उसकी, इस ट्रेकिया के अंदर अंदर ही वो दो हिस्सों में बांट गई, और एक राइट फेफड़े को जाएगी, एक लेफ्ट फेफड़े को जाएगी, उसको राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस हम बोलते हैं। बड़ी आसान सी बात है समझना कि लैरिंग्स के दो हिस्से हो गए, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस, उसका नाम चेंज हो गया लैरिंग्स का, ठीक है। सो उस दाहिने फेफड़े को और बाएं फेफड़े को जाने वाली होगी। अब जब ये जो हाइलम मैंने बताया, जो सेंटर वाला जो तो राजमा के अंदर का हिस्सा जो मैंने गर्भ किया होता है उस हिस्से की बात कर रहा हूं, वहां से ये फेफड़ों में एंटर करेगी दोनों साइड, वहीं और भी स्ट्रक्चर जा रहे हैं और वो मीडियास्टाइनम में जा रहे हैं, बड़ी प्रोटेक्शन है उनकी, उनके लिए कुदरत ने अलग अपना अरेंजमेंट किया हुआ है, प्रबंध किया सिक्योरिटी का। सो ये दोनों राइट को जाएंगी लेफ्ट को जाएंगी। अब आगे का जो इसका नाम है, हम लोग इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री जब हम बोलते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में एक नक्शा आ जाता है कि एक ट्री का एक स्टेम होता है, तना होता है, तने के बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं, टहनियां होती हैं, टहनियों की सब टहनियां होती हैं, छोटी छोटी टहनी होती हैं, फिर उसके आगे पत्ते होते हैं, जो लीव्स हैं वो चौड़ी होती है, टहनी तो बिल्कुल पतली होती है, और उसके आगे जो पत्ते निकलते हैं या जहां फूल निकलते हैं, फूल भी चौड़े होते हैं और पत्ते भी चौड़े होते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। और ये जो ब्रोंकियल ट्री है हमारा, जब ट्रेकिया से निकला दो हिस्सों में बटा, और उसके बाद इसका राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस आ गया नाम, उसके आगे जब ये ब्रांचिंग होना शुरू होता है ना, इधर भी टहनियां फैल रही, राइट फेफड़े में लेफ्ट फेफड़े में जानी शुरू होगी, प्लस राइट साइड में तीन भागों में बांटकर तीन तीन लोब में जानी शुरू होगी, लेफ्ट साइड में दो भागों में बांटकर दोनों चीजों में बांटनी शुरू होगी। तो जो ब्रोंकस की वो लेफ्ट साइड में दो हिस्सों में बटी, राइट साइड में तीन हिस्सों में बटी, और फिर वो आगे ब्रांचिंग होनी शुरू होगी, फिर उनकी आगे ब्रांचेस निकलनी शुरू होगी, उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई, ठीक है। ब्रोंकियाई जो है बस समझ कर लें कि एक दरख्त की बहुत ब्रीक टहनियां हैं इस तरह, लेकिन वो अंदर से खोल है, अंदर से पाइप है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जानी है, अंदर और कुछ नहीं जाना, सॉलिड कोई चीज नहीं जा सकती, ऑक्सीजन जाती है। तो ब्रोंकाई के अंदर वे ये जो है ब्रांचेस जब होती हैं, उसका नाम हो जाता है ब्रोंकियोल्स छोटी, जैसे हम तो के बोलते हैं एक तो आर्टरी होगी ना, आर्टरी होगी, आर्टरियोल्स होगी ना, आर्टरियोल्स के आगे जो पंजाबी में उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं रतवाला, रतवाला तक रत सभी समझते, रत क्या है खून, खून क्या है रेड, लाल लाल टाइप की कोई भी चीज जब वाल की तरह ब्रीक हो जाए तो उसको हमने रतवाला बोला था, लेकिन वो ज्यादा डिफिकल्ट है इससे कि हम उसको आर्टरियोल्स बोल दें। अंग्रेजी में समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, हमारे हिंदी में समझना बहुत बहुत मुश्किल सी बात है, जैसे मैंने दूसरे प्रोग्रामों में बताया था, अगर हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं तो बड़ी आसान सी बात है, सभी समझ लेते हैं, और अगर हम ये कहें लो पथ गामनी विश्राम ग्रह तो बड़ा मुश्किल है जानना, ये जान रखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह मेडिकल साइंस में जितने भी हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो ज्यादातर वर्नाकुलर टाइप के हो गए, ज्यादातर रूटीन, गुड वेरी गुड जी, तो ये आम रूटीन के बहुत सारे लफ्ज हैं, हर एक भाषा ने एक दूसरी भाषा से लफ्ज लिए हैं और वो अपना विरसा और स्ट्रांग करते रहते हैं। और मेडिकल साइंस में तो खास तौर पे ऐसा हुआ है कि मेडिकल साइंस चाहे हम हिंदी में, चाहे हिंदी वर्षन वाले लोग हैं, चाहे पंजाबी वाले लोग हैं, ज्यादा वर्ड हमारे जो हैं वो अंग्रेजी वाले ही हैं और उनको समझना हमारे लिए आसान है। तो ये मैं उस ब्रोंकियल टी की एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे रहा हूं कि टी की तरह जब बना तो जब उसकी ब्रोंकियोल्स बन गई, छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं इनके आगे फिर जैसे पत्ते निकले, तो पत्ते निकलते हैं तो वो टेनिस जो ज्यादा चौड़े होते हैं ना, बड़े होते हैं ना, तो उसके आगे एक जैसे फुलफुला होता है ना, पुखाना होता है ना, बुलबुला जैसे फुलाते हैं हम लोग, वो बुलबुले की तरह आगे स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं उसको, है जी, वो पुकाने की तरह है, वो फैलती है कि जैसे ही बाहर से हवा आई हमने इंस्पिरेट किया, सांस लिया, इतनी ब्रांचों से होता होता होता होता एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, वो एल्वियोलाई फूल जाएगी, जब वो फूल जाएगी तो उसके अंदर दो काम होंगे, एक तो ये कि ये एयर आई है, दूसरा ये है, अच्छा एक और अंतर है इसमें, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि सांस तो हम एक मिनट में 14 से 16 बार लेते हैं नॉर्मली, हार्ट एक मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है, मतलब क्या हुआ, हार्ट जो फेफड़ों को खून भेज रहा है वो एक मिनट में 72 से 80 टाइम भेज रहा है, मतलब है कि ये जो एल्वियोलाई है इसमें ऑलरेडी हवा आने से पहले खून वहां पर है, और वो खून है जो पूरे शरीर से होकर आया है, उसमें नाइट्रोजिनस कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की गैसेस तो हैं, इसमें गार्बेज और भी है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम है। अब ये 72-80 बार ये समझ कर लें कि ये जो ट्रैफिक आ रही है, 72 ट्रेन आ गई हार्ट से फेफड़ों में और वो एल्वियोलाई में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 72 से 80 बार एक मिनट में ट्रेन आ गई, इतनी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है, जो सामान लेकर आ रही, वो जो खून लेकर आ रही है उसमें गार्बेज है सारा, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजिनस गैसेस हैं और भी कुछ है, लेकिन सांस जो है आ रहा वो 14 से 16 बार पर मिनट में आ रहा। तो मैं ये बात कहकर आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि खून ब्लड ऑलरेडी उन एल्वियोलाई में एग्जिस्ट करता है, जब ऑक्सीजन आई बाहर से, सांस से ऑक्सीजन अंदर गई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन भारी है, उसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हल्की है, तो क्या वैसे वो छोटे छोटे स्कूलों में हम जो पढ़ते थे ना, तो ये साइंस के एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करवाते थे कि जो भारी गैसेस है उसका जार था उसको हम नीचे ऊपर रखते थे और जो हल्की गैस उसको नीचे रखते थे, तो अल्टीमेट देखते थे वो एक्सचेंज हो जाती थी, भारी गैस नीचे आ जाती थी, दूसरी ऊपर चली जाती, ठीक वही क्रिया यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है कि बाहर से हमने सांस लिया, ऑक्सीजन इस ब्रोंकियल ट्री से होते होते ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स तक जाते हुए यहाँ एल्वोलाइज में पहुंच गई, और एल्वोलाइज में ऑलरेडी ब्लड यहाँ है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और जहां ऑक्सीजन गई ये तो भारी है, एल्वोलाई में जब ऑक्सीजन गई तो ये अंदर बैठ जाएगी उस ब्लड में जो वहां पर भरा हुआ पहले, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑटोमेटिकली ही ऊपर चली जाएगी, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो कुदरत ने अपने आप बनाया, इसमें कोई बहुत बड़ी कार्यकारी वाली समझने वाली बात नहीं है कि कैसे हमारा खून साफ होता है, कैसे उसको ऑक्सीजन मिलती है, कैसे ही है। और ऑक्सीजन बाहर से आई, ये खून वहां पर है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, और ये जो एक और बात है, यहां पर एक बड़ी ऐसी बात होती है कि जितनी भी एल्वोलाइज हैं, ये जो पुकानी तरह फूली हुई है जिसमें खून आकर इकट्ठा होता रहता है बहत्तर बार एक मिनट में, उसमें नीचे बहुत थिकनेस होती है क्योंकि बहुत ब्लड नीचे है। जैसे ये हम कहें कि किसी एक ही बर्तन में दो तरह की चीजें, दो रंग नहीं रह सकते, दो तरह का जूस हो तो अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, रेड कलर का जो हरे रंग का कोई जूस आप मिलाएं तो वो एकदम मिक्स मिल जाएंगे आपस में। लेकिन यहां पर एक अचंभे वाली बात होती है कि ऊपर वाला जो होता है वो लाइट उसका डिफरेंट कलर होता है, नीचे वाले का सेपरेट कलर होता है, क्योंकि थिक खून नीचे बैठ जाता है। एक बात आपको शायद याद होगी, मेरे दिमाग में आ गई अभी चलते चलते, मैंने आपको कहा था कि प्लेसेंटा जो है जब बच्चा मां के पेट में होता है ना, तो मां से जो खून आता है वो सीधा बच्चे को नहीं जाता, रास्ते में एक कस्टम डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, तो उस प्लेसेंटा में खून एक तरह इस तरह का कुदरत का करिश्मा है कि एक ही बर्तन में दो तरह का खून रहता है, एक खून जो मां की तरफ से आ रहा है उसमें ऑक्सीजन है और वो भारी है, दूसरी तरफ बच्चे से वापसी होकर खून जो आ रहा है वो भी प्लेसेंटा में मां को वापस जा रहा है और वो हल्का है, वो सेपरेट है। तो मतलब बच्चे से जो आया हुआ खून वो ऊपर रहता है और नीचे से प्लेसेंटा, आपने देखा होगा कभी किसी ने ऑल देखी हो ना, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ऑल देखी हो तो उसके नीचे वो नाली लगी होती है जो हम काटते हैं, नाड़ू काट दिया जी, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो नीचे लगी होती है, और नीचे इसीलिए लगी होती है कि मां की तरफ से आने वाला खून ऑक्सीजन वाला है और ऑक्सीजन भारी है, ये नीचे रहेगी, और जो बच्चे से आने वाला खून है वो हल्का है इसलिए ये ऊपर रहेगा, और आप उसको देखेंगे भी तो नीचे वाला पोर्शन जब और बाहर आ जाती है बच्चे के साथ तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो रेड होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो है जहां अम्बिलिकल कॉर्ड लगी है वो नीले नीले रंग का होता है। तो कुदरत का करिश्मा है कि एक ही बर्तन में दो तरह के खून रह रहे हैं। समुन्द्र में भी ऐसा होता है कि वहां का ये नीला समुन्द्र है, वहां का ये हरे रंग का समुन्द्र है, लेकिन समुन्द्र में दीवार तो होती ही नहीं, एक ही पॉट में इस तरह होता है। तो वही बात मैं फेफड़ों की बात आपसे कर रहा हूं कि फेफड़ों में भी ऐसा होता है कि जो खून हार्ट से फेफड़ों में आया, एल्वोलाइज में पहुंचा, वो हल्का है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और बहुत सी गैसें हैं, वो हल्की है, वो ऊपर रहेंगी, और ये जो जाएगी और एयर बाहर से ये भारी है और ये सेडिमेंटेट करेगी नीचे। तो नीचे वाला खून जो है उसमें ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इन्वेड करती है, और इन्वेड करने का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था, कुदरत ने हर चीज इस तरह बड़े समझे ना, अगर आप हम लोग समझना चाहें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हर चीज को कैसे कैसे कुदरत ने बना दिया ऑटोमेटिक। वो गुरु नानक देव जी की बात मैंने करी थी, कई बार मैं करता हूं कि जो कि छिपाया सो एक बार, उसने जो करना था ना एक बार सब कर दिया है, अपने आप सारा कुछ चले जा रहा है। और ये भी अपने आप करने वाली बात है कि मैं जब सेल की बात कर रहा था ना आपसे, एक सेल है, सेलों से ट्रिलियन सेल्स हैं जिससे बॉडी बनी हुई है, अब सेल किस तरह का किला है जिसकी दीवार तो है और इस दीवार में दरवाजा नहीं है, अब इस सेल में बाहर से खुराक भी जाती है, अंदर से गार्बेज भी बाहर आता है, लेकिन दरवाजा नहीं है, तो अब उसका क्या प्रोसेस है, उसकी मैंने बार बार आप लोगों को एग्जांपल दिए। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में उसी तरह वो बैठ जाए कि या हाँ ऐसे ऐसे ये होता है। आप कपड़े के पोने से आप चाय छानते हो या कंजीनी बनाते हो तो वो छानते हो, या कोई भी चीज इस तरह की पानी की बनाई हुई शरबत की उसको छानते हो, तो उसको जितना प्रेशर दोगे ना, जितना ऊपर से प्रेशर दोगे उतना नीचे से वो संघना मादा भी नीचे आ जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर ज्यादा नहीं जाएगा। इसी तरह ही जो खून सेल में पहुंचता, हर एक सेल की बात करो, उसमें जो आ जाते हैं ना वो आर्टियोल्स हैं, बाहर से खून सेल में आता है, आर्टियोल्स में प्रेशर है, वो प्रेशर की वजह से आर्टियोल्स का खून सेल की दीवार को इसी तरह प्रेस करके उसके अंदर चला जाता है, और जो अंदर का गार्बेज है जिसमें गैसेस हैं वो बाहर आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह इस प्रोसेस का जो मैंने प्रोसेस आपको बताया कि कैसे सेल के अंदर दरवाजा तो है नहीं, कैसे सेल के अंदर खून जाता है, खुराक जाती है, कैसे सेल से अंदर से बाहर गार्बेज आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परमीएबिलिटी। तो परमीएबिलिटी के तरीके से ही ये सारा प्रोसेस सारे शरीर में एक एक सेल में खून जाता है, खुराक जाती है। इसी परमीएबिलिटी के तरीके से ही एक सेल से बना हुआ गार्बेज वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं फेफड़ों की। अब फेफड़ों के एल्वोलाइज में वो जो पुकाने फूले हुए हैं उनमें हार्ट से खून आता आता आता आता 72 टाइम खून आ गया और उसमें आकर सेडिमेंटेट कर रहे वो फूल गए, वो फूले हुए हैं। और याद करें कि फूलना भी उनका इस तरह है कि वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकें, अपनी आंख से नहीं देख सकते, इतने बारीक हैं, फूल जाते हैं। 72 बार एक ट्रेन आई, उसने अपने पैसेंजर वहां डाल दिए, बावजूद इसके भी वो माइक्रोस्कोप से देखने लायक है। तो क्या हुआ, वो उसमें चले एल्वोलाई में वो चले गया, वो खून बैठा हुआ, पहले बाहर से ऑक्सीजन आई तो उस ऑक्सीजन के जो वो भारी है, उस ऑक्सीजन का जो है मॉलिकुलर वेट ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से, तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रह जाती है, वो चीजें ऊपर आ जाती हैं, जो सॉलिड ब्लड होता है वो नीचे रह जाता है। अच्छा एक याद, इस ब्लड में और गार्बेज भी है, ये जो ब्लड फेफड़ों से हार्ट से होकर फेफड़ों में आया है ना, अकेला गैसेस गार्बेज नहीं है, और गार्बेज भी है। उसकी बारे में आपको बताता हूं कि ये यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी है, कार्बन डाइऑक्साइड हल्की है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है जिसको एक्सपायरेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन भारी है वो नीचे बैठ जाती है, और नीचे ऑलरेडी ब्लड है और उस ब्लड में ट्रेन के खाली डब्बे हैं। मैंने आपको बहुत बार कहा कि जितने भी ब्लड के सेल है ना, उनमें कुछ सेल तो हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लिएटेड सेल। न्यूक्लिएटेड सेल कहने से मेरा मतलब ये है कि उसका अपना अंदर भरा हुआ है, उसका उसको लिविंग सेल बोलते हैं हम लोग, जो अपने आप अपनी भी जिंदगी आगे आगे कर सकते हैं। सो वो उनको हम न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, ये सारे सेल जो हैं ये न्यूक्लिएटेड सेल हैं, मतलब इसके अंदर खाली जगह नहीं है, इसके अंदर अपना मटीरियल है भाई। लेकिन जो आरबीसीज हैं जिसको हम रेड ब्लड कहते हैं, लाल खून के कण जिसको हम बोलते हैं, ये बेचारे खाली डिब्बे हैं, ये अंदर इसके कुछ नहीं, बाहर बाहर दीवार ही है, खाली डिब्बे हैं, और जो ऑक्सीजन आई थी नीचे वो इसमें भर जाती ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये खाली हैं, और भरती कैसे है, क्योंकि इनका अपना मेम्ब्रेन है, इनका को ये भी तो सेल है ना, तो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो भारी, वो जबरदस्ती इसके अंदर घुस जाती है, ये ट्रेन के डिब्बे भर जाती है, उसके बाद इनको वापस जाना है, और वापस जाने के लिए नीचे वाले पोर्शन से जो निकलती हैं लाइनें जिनको हम बोलते हैं वेन्स, और उसकी जगह वेन्स जो हैं वो बाईं तरफ हार्ट को खून लेकर जाती, आने वाली थी एक पल्मोनरी आर्टरी, वो गार्बेज लेकर आ रही थी, दो भागों में बंटकर दोनों फेफड़ों को उसने बांट दिया, दोनों फेफड़ों से फिर दो दो नालियां कि भाई जितना क्योंकि 72-80 बार चला है बेचारा, तो जितना ज्यादा खून है साफ हो गया है इसको फटाफट पहुंचा दीजिए, फैक्ट्री में जितना सामान तैयार हो गया इसको फटाफट मार्केट में भेजें। तो कुदरत ने चार वेन लगा दी कि चार वेन जो है दो राइट फेफड़े से दो लेफ्ट फेफड़े से फटाफट हार्ट के बाईं तरफ लेफ्ट एट्रियम में वो भेजना शुरू कर देती। तो खैर वो हार्ट की बात है, मैं केवल आज फेफड़ों तक सीमित हूं, तो फेफड़ों की बात मैं ये कर रहा हूं कि इस प्रोसेस से ये जो हमारी एल्वोलाई है इनमें एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है, वो एक्सचेंज प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक इसमें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि 72 बार खून आता है या 80 बार आता है या किसी का ज्यादा भी आता होगा, पल्पिटेशन होता है या प्रॉब्लम होती है तो खून ज्यादा आ जाता है कई बार फेफड़ों के, डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप को बुलाकर हम जो देखते हैं ना तो यही चीज देखते हैं कि कोई चीज ज्यादा आ गई है तो हवा को जाने में दिक्कत होगी ना, उसकी अलग अलग आवाजें हैं जो हमारे कानों में फिक्स है। जैसे वो कोई अच्छा शिकारी होता है ना तो बाहर जाए वो शिकार करने तो कोई जानवर बोलता बोलता ये पटेरा बोल रहा है, ये तीतर की आवाज आ रही है, ये इसकी आवाज है, वो जानवरों की आवाजें उसके दिमाग में फिट हो जाती ये बोल रहा है। इसी तरह हम लोग डॉक्टरों के दिमाग में ये चीजें फिट होती है कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो कैसी आवाज आएगी, वो हमारे कानों में फिट है। अगर किसी को निमोनिया हो गया तो कैसी आवाज आएगी, वो हमारे कानों में फिट है। तो जितनी भी बीमारियां इस तरह की होती हैं उनकी आवाजें अलग अलग हमारे कानों में फिक्स है दिमाग में कि हम ये उसकी आवाज है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रोसेस से एक्सचेंज का प्रोसेस गैसों का चलता रहता है, बाकी जो गार्बेज है ना यहां से गैसों का गार्बेज एक्सचेंज हुआ है और आगे ये खून हार्ट में गया, हार्ट ने फिर खून पूरे शरीर को दिया, पूरे शरीर में चलते चलते अलग अलग सेंटर हैं, अलग अलग जैसे किसी ने थाने बनाए होते हैं ना, ये सीए स्टाफ है, ये स्टाफ है, वो है, अलग अलग चीजें उन्होंने बना दी हैं। तो आगे जब ये खून चलता चलता, इसमें ऑक्सीजन तो है क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए उनको, जैसे बाजार में आता है ना कोई रेडी वाला को सब्जी बेचने के लिए आता है और उसके पास तो सभी सब्जियां हैं, मेरी जो जरूरत है मैंने कद्दू खरीदने तो कद्दू लूंगा, मैंने भिंडी खरीदनी तो मैं भिंडी लूंगा, बाकी सब तो चलता रहेगा। तो फेफड़ों ने ऑक्सीजन लेनी थी वो ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, आगे ये खून गया हार्ट ने फिर इसको पूरे शरीर में भेज दिया, पूरे शरीर में भेजते ये खून चलते चलते चलते चलते पहुंच गया किडनी में, कुछ हिस्सा किडनी में पहुंच गया। तो किडनी ने ये सोचा कि ना भाई खून में इतना सोडियम चाहिए, इतना पोटेशियम चाहिए, इतना ये चाहिए, इसमें तो बहुत ज्यादा आ गया है, ये तो बंदा लून बहुत खाता है, ये तो बंदा ये इस तरह की खुराक बहुत खाता है, ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं इसके ये तो एल्ब्यूमिन फैटी चीजें बहुत ज्यादा खाता है। तो वो क्या करेगी कि भाई मेरे पास ये छानना लगा हुआ है, मेरे पास फिल्टर लगा हुआ है, इसमें जो जो चाहिए शरीर को मैं वो जाने दूंगा, बाकी चीज नहीं जाने दूंगा, ये मेरा कस्टम डिपार्टमेंट है, बाहर के देश से ये चीज नहीं आ सकती। तो वो चीज वापसी खून में फिर भेज देगी किडनी, जो दूसरी चीज है उसको पानी में मिक्स करके पेशाब से बाहर निकाल देगी। अब गार्बेज तो फिर भी बच गया, और भी गार्बेज बच गया, वो फिर खून जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और सर्कुलेट करते करते वो फिर पहुंच जाता है चमड़ी के पास। चमड़ी जो है हमारी, वैसे तो बाहर से लगता है कि ये तो बंद है पूरी तरह, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें मुसाम हैं और वो मुसाम जो हैं वो परमीएबिलिटी के हिसाब से खुलते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। बाहर ठंड हो तो पेशाब ज्यादा आता है, कोई यहां पसीना नहीं निकल सकता, मुसाम बंद है, गर्मी है तो ये मुसाम फैलते हैं, अंदर से प्रेशर ज्यादा होता है, ये फैलते हैं, पसीना बाहर आता है, पेशाब काम आना शुरू हो जाता है। तो कुदरत ने ये बना, तो खैर ये ब्लड जो बाकी है किडनी से भी हो गया, फेफड़ों से भी हो गया, जो जो जहां जहां कार्रवाई होनी थी सफाई की हो गई, और उसके बाद ये स्किन के पास पहुंचा था तो स्किन ने कहा कि ठीक है भाई ये जितना गार्बेज बाकी है ना इसका मैं संभाला करती हूं। और स्किन के अंदर कुदरत ने एक स्पेशल टाइप का टोका लगाया हुआ, टोका मशीन है, चारा कुतरते हैं हम छोटा ब्रिक भी करते हैं उसके पशुओं की, तो इसी तरह का उसको हम बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स। वो जो एपोक्राइन ग्लैंड्स है ना, क्योंकि सारा गार्बेज तो खून में मिक्स होकर आ रहा है, वो सारा तो इतना ब्रीक नहीं है कि चमड़ी के लसामों से बाहर आ जाए, इसलिए वो उसको ब्रीक करता है। और ब्रीक करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड तो फिर पसीने से वो बाहर निकल सकते हैं। कई बार लोगों को आपने देखा खारिश होती है ना, तो खारिश का मैकेनिज्म क्या है, तो कभी इधर खारिश होगी कभी उधर खारिश होगी, क्या है मतलब ये है कि वो जो गार्बेज आ गया आपने जो खाया था वो पूरी तरह टट्टी से पेशाब से निकला नहीं है, रह गया है, वो स्किन तक पहुंचा है। और वो जो चीजें आपने खाई हैं वो शरीर को नहीं चाहिए, शरीर बर्दाश्त नहीं करता, वो गार्बेज के लिए हरेक सेल ने बाहर निकाल दी है और खून में जाते जाते चवड़ी में पहुंच गई है। अब चवड़ी बोलती है कि भाई ये तो सबसे बड़ा ऑर्गन है, पूरे शरीर को कवर करता है, इतना बड़ा ऑर्गन तो कोई और है ही नहीं, अब मेरे से तो कोई गार्बेज बचना नहीं चाहिए, मैं तो सभी निकालना है मेरी जिम्मेवारी। तो वो जो गार्बेज स्थित होता है केमिकल टाइप का होता है वो नहीं निकलता, तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमें इरिटेशन होती है, हम खारिश करते हैं ताकि इससे वो जो मुसाम है वो डायलेट हो जाएं और वो बाहर निकल जाएं। तो खारिश करते करते कई बार वो छिला भी जाता है, खून भी आ जाता है और कई बार वो उसमें से मुआद निकलता है, उसको हम रेक्ट एक्जिमा बोलते हैं, उलझेंग एक्जिमा बोलते हैं। कई बार निकलता कुछ नहीं लेकिन खारिश ड्राई हो रही है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा तो कम है लेकिन केमिकल्स की मात्रा ज्यादा है, खारिश इसलिए हो रही है। तो मतलब खारिश का एक्सप्लेनेशन ये है। हम फिर आ रहे हैं अपने उस फेफड़े की तरफ ही, तो फेफड़े के अंदर का जो ट्री था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ब्रोंकस का जो ट्री है वो इस तरह काम करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसमें बाहर आ जाती है, या और भी जितनी नाइट्रोजन गैसेस उसमें बनती हैं उनको वो बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से मान लीजिए जैसे आप पहाड़ी में चले गए, वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम है, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, पर जरूरत है ना शरीर की, हम कुदरत ने नियम फिक्स किया है कि 14 से 16 बार अगर एक आदमी सांस लेता है तो जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जब हम हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो फिर हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, या हम तेज तेज दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो अभी हम तेज तेज सांस लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि अंदर की डिमांड पूरी करनी है, सप्लाई पूरी करनी है, इसीलिए हमारा सांस तेज तेज चलता है। अब इसने ऑक्सीजन ले रही तो हार्ट को ऑफ ग्राउंड मुसीबत हो गई कि भाई इसको आगे सप्लाई भी करना, हार्ट पे डिपो है ना बेचारा, है चीनी का डिपो है, बाहर से सामान आया है इनको आगे सप्लाई करना है, ये रख भी नहीं सकता, तो इसलिए हार्ट भी उतना तेज तेज चलना शुरू हो जाता है। हम दौड़ते हैं तो हार्ट भी उतना तेज तेज चलता है, हाइट पे जाते हैं सांस फूलता है तो हार्ट भी बहुत तेज तेज चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सप्लाई वो पूरी उसकी कर रहा होता है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन था हमारे फेफड़ों का था। उसके बाद फंक्शन के बारे में तो आप सब समझते हैं कि इसका फंक्शन है ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑक्सीजन के बिना कोई सेल जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में इस तरह का काम करती है, अगर चूल्हे में हमने लकड़ी रख दी लेकिन ऊपर दाल सब्जी भी रख दी, लेकिन हमारे पास माचिस ही नहीं है, आग नहीं बलेगी, कुछ नहीं बनेगा। तो ऑक्सीजन, अब वैसे भी अगर चूल्हे में आग नहीं जलती तो हम फूंक मारते हैं ना, फूंक मारने का मतलब क्या होता है, आग को जलाना, और ये जो हवा है, ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे शरीर के अंदर इस तरह का काम करती है कि आग पैदा होती और जिससे हमारे शरीर का पूरा चलन जो है वो चलना शुरू हो जाता है। कभी आगे किसी प्रोग्राम हुआ तो मैं ये भी आप बताऊंगा कि भाई इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे आग बढ़ती है, ये कैसे होता है कि ऑक्सीजन से सारा शरीर काम करने शुरू कर देता है, जो ऑक्सीजन नहीं है तो पता मुद्दा हो जाता है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे कि ये कैसे कैसे होता है। मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम मेरा खत्म हो रहा है, पर हाले बाकी बहुत कुछ मुझे कहने वाला है, जैसे वेट है, अलग अलग फेफड़ों का अलग अलग वेट है, नीचे का जो डोम है उसकी कैसी कैसी बनतर है, उसमें क्या क्या है, और उसमें अगर कोई अंतर आ जाता है तो हमारे पास क्या क्या निशानियां बाहर आएंगी। अभी तो बहुत सी बीमारियां हैं इसकी, फेफड़ों में क्या क्या होता है, जैसे दमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया होता है, सीओपीडी होता है, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां, जितनी जितनी मुझे याद आती जाएंगी मैं आप सब लोगों को बताता जाऊंगा कि इसमें होता क्या क्या है, कैसे कैसे फर्क होता है। इसको हम दमा क्यों बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस क्यों नहीं बोलते, ब्रोंकाइटिस ही क्यों बोलते हैं, निमोनिया क्यों नहीं बोलते, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग क्या डिफरेंस है, उसके बारे में अगले प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। और फिर बताऊंगा कि भाई अगर इस सारे ताने बाने में कोई नुक्स हो जाए तो डॉक्टर तो देख लेंगे, आम आदमी क्या देखेगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जब इस तरह के वकार फेफड़ों में पैदा हो जाएंगे तो कुछ निशानियां बाहर आएंगी जो आम आदमी देखकर पहचान सकता है कि इसके यहां पर नुक्स है भाई, ताकि वो कंसर्न डॉक्टर के पास उसको ले जाए सीधा और सीधा उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाए। यहां बहुत सी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आप घर पर भी बहुत सी चीजों का उपचार कर सकते हैं ताकि सीरियस होने से पहले पहले आप उसको कुछ सहूलियत दे सके, कुछ बचा सके। और डॉक्टर के पास जाए ऐसा ना हो कि डॉक्टर बोले ओ जी आपने तो देर कर दी लाने के लिए। सो बहुत सी चीजें इन प्रोग्रामों में मैं आपके साथ हमेशा साझी करता रहता हूं। और अब फेफड़ों की बात आई है तो वो भी मैं बातें आपके साथ साझी करूंगा कि कौन सी निशानियां बाहर आएंगी अगर इसमें ये पूरे सर्कल है, अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही तो, अगर प्लूरा में कोई नुक्स हो गया है तो, अगर किसी लोब में नुक्स हो गया तो, अगर हवा यहां रुक गई बाहर आ ही नहीं रही फेफड़ों से जिसको बाहर आना चाहिए, तो ये सब क्या होता है, कैसे होता है और उसकी निशानियां क्या होंगी जो बाहर आएंगी, जो बाहर आप देख सकते हैं, इसका वेरवा मैं अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा। मैं गुरदीप सिंह संधु आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोड डबलन कैलिफोर्निया 95468 फोन नंबर 408-687-1899 ईमेल एड्रेस homeomedicine@yahoo.com homeomedicine@yahoo.com। किसी भी वक्त किसी बीमारी के संबंध में पूछना चाहते हैं, कोई शंका है, ट्रीटमेंट कहीं से भी आप करवा रहे हैं, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप पूछना चाहते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, तो जो नेचर के प्रोसेस है जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं, मेरे 52 इयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए और इसमें से 26 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, अब जब से अमेरिका में हूँ 32 साल हो गए, तब से भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, एवरी डे पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो नॉलेज इकट्ठा किया हुआ उसके हिसाब से रुकावट कहाँ हो सकती है वो मैं आप सब लोगों को बता सकता हूँ ताकि आपका इलाज हो सके, आप जल्दी सेहतयाब हो सके। तो आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब, थैंक यू।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं,
0: सत श्री अकाल।

0: और क्या की हम सब दिन, हम सब दिन, हम सब दिन।
1: जी दोस्तों, गुरु रविदास जी की बाणी वक वक रागां विच दर्ज है, जिवें कि श्री राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है, गौरी राग दे विच पांच शब्द, आसा राग दे विच छे शब्द, गुजरी राग दे विच एक शब्द, सोरठ राग दे विच सत शब्द, तनासरी राग दे विच तीन शब्द, जैतसरी राग दे विच एक शब्द, सूही राग दे विच तीन शब्द, बिलावल राग दे विच दो शब्द, गौंड राग दे विच दो शब्द, रामकली राग दे विच एक शब्द, मारू राग दे विच दो शब्द, केदारा राग दे विच एक शब्द, भैरव राग दे विच एक शब्द, बसंत राग दे विच एक शब्द, ते मलार राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है जी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज हन। उन्हां दे कुछ प्रसिद्ध शब्द जेडे है वह है, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, तू मैं हां मैं तू हां साडे विच की फर्क है, जिवें कि बेगमपुरा शहर का नाओ, बेगमपुरा शहर का नाम है जिथे कोई गम नहीं, मेरी संगत पोच पोच दिन राती, मेरी संगत हमेशा रब दे नाम विच लीन रहिंदी है, संत तुझ तुझी तन रंगत प्राण, संत दी भगती नाल ही जीवन सुखी हुंदा है, तुम चंदन हम इरंद बापुरे, तू चंदन है मैं एक छोटा जिहा बूटा हां। जी दोस्तों, साडे नाल दिल्ली तो आराधना सिंह जी जुड़े हन, जो कि इकताली दे इकताली शब्द उन्होंने गाए हन, उन्होंने याद किते हन, ते असी उन्हां दा ते एक शब्द थानू असी सुनाने हां, जो कि क्योंकि वो साडे नाल लाइव होके गा रहे हन, ते असी उन्हां दा एक रिकॉर्डेड जिहड़ा शब्द है वह थानू सुना रहे हां जी। जी सुनो जी।

0: हां जी, गुरु रविदास जी का समाज ते प्रभाव बहुत ही गहरा ते क्रांतिकारी सी। उन्होंने जात पात दे भेद भाव नूं चुनौती दित्ती अते मनुखी समानता का संदेश दिता, जिस नाल दबे कुचले वर्गां नूं आत्म सम्मान ते हक लई खड़ा होने की प्रेरणा मिली। उन्हां दी गुरबाणी ने लोकां नूं रस्मां ते अंध विश्वासां तों मुक्त करके रब नाल सिद्धी भगती का राह दस्या। बेगमपुरा वर्गे शब्दां राहीं उन्हां ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिस विच कोई गम नहीं, कोई जात पात नहीं, सब नूं न्याय मिलदा है। उन्हां दे उपदेशां ने भगती अंदोलन नूं मजबूत किया। मीराबाई गुरु नानक वर्गे महान संतां नूं प्रभावित किया। अज भी गुरु रविदास जी दीआं सिख्यावां समाजिक न्याय, समानता अते मनुखता लई प्रेरणा दा स्रोत हन अते लोकां नूं भाईचारे ते रूहानी चानण वल तुरन लई प्रेरित करदीआं हन। जी दोस्तो, नमस्ते, सलाम। अज दे खेड़ा लाइव शो दे विच बस इन्ना ही। आराधना जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं अपने कीमती समें दे विच समां कढ़िआ ते श्री गुरु रविदास जी दे शब्द राही साडे स्रोतियां नूं निहाल कीता। जी असीं आशा करदे हां कि साडी इह सांझी कोशिश तुहानूं पसंद आई होगी। जी आराधना जी, लास्ट एक मिनट विच की कहना चाहोगे?
1: जी मैं यही कहना चाहांगी कि गुरु रविदास महाराज जी दे चरणां च सारे जिन्नी सृष्टि दे लोक ने सारी संगत जुड़ी रहे और बाणी सुनदे रहन, बच्चिआं नूं भी सिखाउण और घर घर बाणी सुनाई जावे, बच्चिआं नूं भी सिखाई जावे, आप भी सुनिया करो। बाणी तो बच के मैनूं कोई भी लिरिक्स अच्छा नहीं लगता, वैसे प्रोफेशन है साडा गाना बजाना सर, इस करके गीत गजल भजन गाई दी, लेकिन जो शब्द बाणी च आनंद है ना, सिक्ख्या भी है और तुहानूं बल भी मिलता है और पूरी तुहानूं ऊर्जा मिलती है बाणी पढ़न नाल। ते मैं तो यही कहांगी कि बाणी पढ़िया करो, सुनिया करो और एक दूसरे नाल बाणी बारे ही चर्चा होनी चाहिए। आप जी का अनेक अनेक धन्यवाद, तुसी इन्ना समय मैनूं दिता अपने अनमोल समय चो, और मैं प्रभात रेडियो दी हमेशा आभारी हां, हमेशा आभारी हां और हमेशा आभारी रहांगे। और साडे जिहड़े श्रोता सुन रहे ने, आप सब नूं बड़े अदब बड़ी आदती नाल सत श्री अकाल, और इसे तरह तुसी प्रभात रेडियो नाल जुड़े रहो, साडे केड़ा साहब जी दे नाल प्रोग्राम सुनदे भी रहो और अपनी गल भी अपने विचार भी सांझे करिया करो। मैं तो यही कहूंगी सर, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद आराधना जी, धन्यवाद जी। हां जी दोस्तो, बस खेड़ा लाइव शो दे विच बस अज इन्ना ही, फिर एक नवा प्रोग्राम जानकारियां भरपूर लैके तुहाडे नाल असीं जुड़ांगे जी।

0: arriva porco, porco.
1: A dia pia, tô repiário do fogo e tô pevário do esselito. इतना उदास सुखे सुखे होंठ अखियों में प्यास इसलिए इसलिए ओ आजा पिया।

फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते हो। ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती भ्रातरी भाव दिया

0: वाह वाह,
1: तेरा बुरुसया मनाया जा सकदा
0: वाह,
1: टूटे दिलानू जोड़िया नहीं जा
0: वाह
1: ते काबा डाके बनाया जा सके।
0: वाह वाह।

0: वाह वाह वाह,
1: प्यार तेरे नाल करके वे, प्यार तेरे नाल करके वे गम पल्ले पालने।

0: रोग
1: वाह जी वाह, वाह मजा आ गया हर वारी दी
0: जैसी
1: तरह।
0: जी बाजवा साहब
1: बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है, कमाल दी
0: ये
1: तुहाडी
0: जी अपने
1: लिखणा। हाँ जी
0: मैडम रजिंद्रा कुमारी जी दी लिखी हो सी।
1: अच्छा मैडम, तुसी बहुत सारे गाने उन्हां दे लिखे गाए ने
0: हाँ जी हाँ जी
1: मेरे
0: हाँ जी
1: ख्याल है। ठीक है पर बहुत खूब लिखते ने, बहुत सोहना लिखते ने वो भी। तो तुसी
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी
1: हाँ
0: सारे श्रोतियां दा,
1: तुसी
0: सुनने वालों का, थोड़ा टाइम देने का, ते बाकी
1: टाइम
0: सारी
1: तुहाडा जनाब, रेडियो तुहाडा, टाइम तुहाडा, असीं तुहाडे। हाँ जी
0: साडे सारे हरमन प्यारे साथियों नू,
1: हाँ
0: सज्जन वेलिया नू, मित्रां दोस्तां नू, सब नू बहुत बहुत प्यार, निघी प्यार भरी नमस्ते।
1: जी,
0: सत
1: उन्हां
0: श्री अकाल, सलाम,
1: सारिआं
0: आदाब।
1: वल्लों आप जी नूं वी प्यार भरी सति श्री अकाल। ते मैं तुहाडे नाल दो शेर करांगा
0: हां जी आउण दिओ जी।
1: कि कुड़ी नहीं खंड दी पुड़ी सी भागो, उन्हें पिंड दे भाग
0: वाओ
1: जगाए।
0: वाह जी वाह, क्या बात है,
1: कुड़ी नहीं खंड दी पुड़ी सी भागो, उन्हें पिंड दे भाग जगाए। ते गलियां विच ट्रैफिक वध जाए जद ओह छत ते वाल सुकाए।
0: वाह वाह वाह वाह
1: कद सरू दा बलौरी अखां हर दिल नूं
0: वाह जी वाह
1: धड़कौंदी जाए। ते पिप्पल
0: जी,
1: थल्ले वी तियां लगदन जद ओह
0: वाह वाह
1: अंबरी पींग चढ़ाए।
0: क्या बात है,
1: ते पींग उत्तों भागो डिग पई, और सारे पिंड ने कीरने पाए, पाए पींग उत्तों
0: अच्छा
1: भागो
0: जी
1: डिग पई,
0: वाह वाह
1: सारे पिंड ने कीरने पाए। बहुत माड़ी गल
0: हाँ
1: हुई यार, वो तो तुहानू पता
0: हाँ
1: ही
0: जी हाँ जी, माड़ी गल है, उतो डिगना महाराज है,
1: हाँ,
0: माड़ी
1: डिग
0: गल है जी।
1: सारे पिंड दे अरमान खराब हुए ने। अच्छा दूजा
0: हाँ
1: शुगल आला शेर है जी।
0: जी, ये ऐसे दूजे दे उत्ते, सॉरी मैं थोड़ी गल
1: हाँ जी
0: बीच बीच कट हो गई,
1: हाँ जी
0: वो मैनू याद आ गई पुरानी कॉलेज टाइम दे विच, साडे एक बहुत ही निघे दोस्त सीगे, अज तक रहे नहीं दुनिया से,
1: अच्छा
0: बहुत बहुत हरमन प्यारे सीगे,
1: जी
0: इंद्रमोहन सिंह सोढी साहब उन्हां दा नाम सी,
1: अच्छा
0: ते बहुत सोहणियां रचनावां उन्होंने भी लिखिया सी। उन्होंने एक लिखिया सी, सिखर दुपहरे कोठे चढ़ के अंबरों पंछी लाउंदा वे दुहाई रब दी, औ को पुरजा बाल सिखाउंदा वे दुहाई रब दी। वो मतलब ए
1: ओए
0: तुहाडे जिहड़ा कोठे चढ़ के वाली गल दे मेरे दिमाग च आ गई, हुण तां चलो इदां दीआं
1: ए,
0: असीं
1: जदों
0: हां
1: असीं छोटे हुंदे सां उदों अक्सर
0: जी
1: औरतां या कुड़ियां कोठे ते चढ़ के वाल सुकाउंदियां हुंदियां सन। उदों कहिंदे
0: हां जी हां
1: ड्रायर
0: जी हां जी
1: हुंदे
0: हां
1: सन।
0: जी
1: हां जी,
0: जी
1: नाले उन्हां ने सज्जे खब्बे जाणा, ते उहनां दा जरा गली इधर उधर झाती उहनां दी वी वध जाणी, ते सारे पिंड दा ध्यान वी कोठे वल हो
0: हाँ जी हाँ
1: जाणा।
0: जी
1: अच्छा दूसरा शेर है जी। शरीक कढ़दे रहिंदे ने परवाने मरदे रहिंदे ने।
0: वाह वाह
1: शरीक कढ़दे रहिंदे ने परवाने मरदे रहिंदे ने, छड़े सड़दे रहिंदे ने ते व्याहे लड़दे रहिंदे ने। छड़े
0: बिल्कुल सोलह गल
1: छड़े
0: करी
1: सड़दे छड़े सड़दे रहिंदे ने, व्याहे
0: हाँ जी
1: लड़दे रहिंदे। वेखो जी
0: वाह,
1: आप अपने थां सारे ही सेट जे। हां जी
0: सारे ही सारे सारे अपनी
1: हाँ
0: अपनी अपनी अपनी डुग डुगी सारे बजाउंदे हैं, जिदां दी
1: बजाउंदे
0: बजदी
1: हैं
0: है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। ते बहुत बहुत मेहरबानी रौनकां लाउण
0: तुहाडी बहुत
1: वास्ते,
0: बहुत
1: खुश
0: मेहरबानी जी,
1: रहो।
0: बहुत बहुत दिल खुश
1: बस
0: होया सारिया नू,
1: थैंक
0: बल्कि ओके जी, बहुत बहुत
1: यू, सत
0: धन्यवाद,
1: श्री अकाल जी, सत
0: ओके
1: श्री
0: ओके।
1: अकाल। सो ए सन जी मल जी हुनी, जेड़े खूबसूरत कितने चला गया, आवाज क्यों नहीं आ रही इन्हां दी। ए आ लो हुण स्टार्ट कर। वाह वाह

0: अज बाग दे विच फुल खिड़िया ए तेरी पग दे शरबती रंग वरगा
1: नाल बना के रखी है किन्ना स्वाद होंदा है। लो भाई दोस्तों हुण तुहानूं असीं सरदार सूबा सिंह जी बटाले तो सरदार सूबा सिंह जी आप जी नूं प्यार भरी सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल वाजा साहब,
1: स्वागत है तुहाडा बहुत बहुत प्रभात रेडियो दे वेड़े। आ जाओ साडे स्टार हो तुसीं
2: सोहणिया जी। जी जी जी वाजा साहब, अज दे प्रोग्राम दे विच थोड़ी एक ना बेइज्जती करनी चाहुंदा वा, मतलब शौक जेहड़ा भी अपनी सरकारी तरफ तो रिटायर हो गया।
1: तुसी ना थोड़ी जी तुहाडी आवाज कटी गई सी, फिर दोबारा बोलो।
2: जी जी मैं तुहानू दस्सण लग्गा भी मैनू इहनू रिटायरमेंट तो बाद जिहड़ा एक कामन क्वेश्चन हर बंदा पुछदा भी ओ यार तेरा टाइम किदां पास
1: हुंदा।
2: मैं क्या भी भरा मैनू तो टाइम लभदा नहीं है। मैं जिस मैं क्या भी जिस बंदे नू किसे तरह दा भी कोई शौक हैगा ना, चाहे ओ गार्डनिंग आ, चाहे ओ साहित्य आ, चाहे ओ कला आ, आर्ट आ, जा संगीत आ, जिन्ने भी फील्ड आ मतलब कला दे आर्ट दे, उस बंदे नू समा ओदे वास्ते जिहड़ा आ समा ना जिहड़ा तुसीं कहिंदे मेरा पास नहीं हुंदा, ओदे वास्ते ही वरदान हुंदा आ इकल्ले रहना जां
1: सोचणा। बहुत ही खूबसूरत गल कीती आ सच्ची वाहे जी। जे बंदे सिखना जानना चाहते ने जिन्हां दीआं हॉबीज होंदीआं ने बिजी होंदे ने जिन्ने काम करदे बिजी रहे,
2: और अपने शौक की खातर वड्डे वड्डे पहाड़ चोटियां सर कर जांदे ने बाजा साहब
1: जी।
2: बिलकुल चोटियां तो उस पहाड़ तो मैनूं याद आया भी जिहड़ा पहाड़ दी की कहिंदे नूं ओहदे ते चढ़ना भी इक हॉबी है, इक शौक है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ
1: ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ।
2: ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ
1: ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਜਾ ਬੈਜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਕਸਰ।
2: ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਾਂਗਾ।
1: ਠੀਕ ਹੈ
2: ਜੀ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜੀ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
2: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ।
1: ਹਾਂਜੀ
2: ਸ਼ੌਕ ਤੋੜ ਲੰਘਿਆ ਕੋਟ ਆਫਤਾਂ ਦੀ,
1: ਵਾਹ
2: ਸਮਾਂ ਸੂਜ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਉਲਾਰਦਾ ਰਿਹਾ।
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ,
2: ਕਈ ਸੱਜਣ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ।

खूबसूरत सूरत ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां।

ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो प्योर ऑन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑन

जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।